0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.
2: बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी दूत की कहानी। कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नामों के पीछे तो ये है ये दूत और उसके बिस्तर पे उसको बताओ।

0: बाहर की वो जा रहा है कोई शबगम का, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास, तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर।
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

ਇੱਕ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਰਾਤ ਨਾ ਫਿੱਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: शनिवार 30 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, सप्ताहांत का दिन यानी कार्यक्रम में होंगे बॉलीवुड के समाचार. वैसे इसके अलावा आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कलाकारों की मनपसंदी विषय की, जब वो भारत की बात हो. कौन सी है आगे बताऊंगी ही. और बात करेंगे कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की. और गाने तो आप कार्यक्रम में सुनते ही हैं. और गानों में आज हैं आपके लिए 60 और 70 के दशक के कुछ गाने. लेकिन अभी पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार. शनिवार 30 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. फरवरी में प्रमुख पद संभालने के बाद विपक्ष के नेता एंगस टेलर आज मेलबर्न में लिबरल पार्टी की फेडरल काउंसिल की मीटिंग में शामिल हुए. पार्टी की मुख्य पॉलिसी जिसमें माइग्रेशन रोकना और न्यूक्लियर पावर के लिए दरवाजा खोलना शामिल है, उन्हें डेलीगेट्स ने लगभग बिना किसी विरोध के पास कर दिया. लेबर के टैक्स ब्रेक सुधारों और नेट जीरो कमिटमेंट को खत्म करने की योजनाओं पर टेलर के एक मुख्य भाषण में चर्चा हुई. क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 40 मिलियन लीटर और डीजल हासिल किया है. एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिपेंडेंट सप्लायर फ्रीडम फ्यूल्स के बीच एक एग्रीमेंट के तहत ये शिपमेंट आने वाले दिनों में ब्रिस्बेन पहुंच जाएगा. इसके बाद इसे जून से रीजनल और इंडिपेंडेंट सर्विस स्टेशन में सप्लाई की दिक्कतों को पूरा करने के लिए पूरे राज्य में बांटा जाएगा. ऊर्जा मंत्री क्रिस पॉविन का कहना है कि ये फ्यूल उन 16 शिपमेंट के अलावा है जो पहले ही हासिल किए जा चुके हैं. 3 चीनी एस्ट्रोनॉट्स टियन गोंग स्पेस स्टेशन पर 210 दिन बिताने के बाद सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आए हैं. सबसे लंबे समय तक ऑर्बिट में रहने का नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद वापसी कैप्सूल उत्तरी चीन के मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतरा. सैकड़ों वॉलेंटियर सिटीजन साइंटिस्ट न्यू साउथ वेल्स की पहली डॉल्फिन जनगणना में हिस्सा ले रहे हैं. न्यू साउथ वेल्स नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस और डॉल्फिन रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की इस जनगणना का मतलब राज्य के बीच हेडलैंड्स, एचूरी बे और तटीय जलमार्गों पर डॉल्फिन की मैपिंग और आबादी जानना है. मैरीन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ऑफिसर एंडी मार्शल का कहना है कि इकट्ठा की गई जानकारी भविष्य में समुद्री रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए बहुत कीमती होगी. मौसम विज्ञान ब्यूरो ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लोगों को चेतावनी दी है कि वे इस सप्ताहांत खतरनाक हवा के झोंकों, भारी बारिश, अचानक बाढ़ और नुकसान पहुंचाने वाली लहरों के लिए तैयार रहें. आज शाम यानी शनिवार 30 मई पश्चिमी जिलों में एक तेज ठंडी हवा चलने का अनुमान है जो राज्य के सेंट्रल वेस्ट को प्रभावित करेगी और फिर दक्षिण की ओर लोअर वेस्ट और साउथ वेस्ट के कुछ हिस्सों जिनमें पर्थ भी शामिल है वहां तक फैल जाएगी. इस बड़े तूफान से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से नुकसान पहुँचाने वाली हवाएँ चलने का अनुमान है. और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर निसॉन कैरोस ने 25-26 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है. मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि ये ऑयल टैंकर HPCL के चार्टर के अधीन भारत के लिए लगभग 2,70,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल ला रहा है। इसमें 25 विदेशी चालक दल के सदस्य सवार हैं और कोई भारतीय नाविक नहीं है। हॉर्मुज में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार विदेश मंत्रालय लगातार ईरान के साथ संपर्क में बना हुआ है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान पहले ही कह चुका है कि यह समुद्री रास्ता भारत जैसे मित्र देशों के लिए खुला रहेगा। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए बात करते हैं बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम अक्सर बात नहीं हो पाती या हम कतरा जाते हैं। अब बच्चों के व्यवहार के पीछे कुछ संकेत होते हैं और माता पिता या परिवार के लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं और बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस अगले अंश में। इसमें बातचीत की है मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा चावला से हमारे सहयोगी शशि कुमार ने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर अक्सर घरों में चुप्पी रहती है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया और उम्मीदों का बोझ, ये सब बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि बच्चा सिर्फ जिद नहीं कर रहा बल्कि भीतर से जूझ रहा है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ से जुड़े संकेत क्या हैं और माता पिता कैसे समय रहते मदद कर सकते हैं, इसी पर है हमारी आज की यह खास बातचीत। और हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा चावला। तो सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
4: शुक्रिया, धन्यवाद।
3: नया साल अक्सर नई शुरुआत और नए लक्ष्यों से जुड़ा होता है। आपके अनुभव में साल की शुरुआत बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकती है?
4: देखिए, बच्चों का तो ये है कि नया साल स्कूल में वो है कि अगर वो नई क्लास में जा रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें नए ट्रांजिशन में उनको थोड़े चैलेंजेस आते हैं मेंटल हेल्थ की वजह से। स्पेशली बिकॉज अगर उनको नए स्कूल में एडजस्टिंग के चैलेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से काफी बच्चे जिनके अगर नए स्कूल में उनके फ्रेंडशिप्स एडजस्ट नहीं होते या वो दोस्त नहीं बना पाते, काफी बच्चों को वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। उस दौरान काफी साइकोलॉजी के रेफरल्स उस दौरान बढ़ते हैं, या फिर उनकी कुछ बच्चे जो थोड़ी सी हायर क्लासेस में होते हैं उनको भी ट्रांजिशनिंग टाइम मोस्टली 6th या 7th ग्रेड में आता है या फिर 9th ग्रेड के बाद आता है। सो दो पीरियड्स होते हैं बच्चों के लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग है स्कूल में। उस दौरान देखा गया है कि बच्चों को ज्यादा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। ये नहीं कहेंगे कि वो डिप्रेशन होता है, बट डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं उस दौरान, क्योंकि वो एडजस्टिंग प्रोसेस है। उस दो टाइम पे बच्चों के स्कूल चेंज होना लाजमी होता है
3: जी।
4: तो यही देखा गया है ज्यादा उस दौरान।
3: क्या आप जनवरी के महीने में बच्चों या किशोरों में तनाव, एंजाइटी या व्यवहार संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी देखती हैं?
4: मोस्टली नोटेड यही आया है कि लॉन्ग गैप ऑफ जब छुट्टियां होते हैं बच्चों को, लॉन्ग ब्रेक होता है यहाँ पे एंड ऑफ नवंबर से लेके एंड ऑफ जनवरी तक। सो ये जो पीरियड ऑफ लॉन्ग समर ब्रेक होता है एंड उसके बाद नई कक्षा में जाने के लिए लोगों को काफी एंजाइटी होती है बच्चों को। जो और चैलेंजेस मैंने देखे हैं इस दौरान वो ये है कि इनको फ्रेंडशिप्स बनाने में मुश्किल होती है अगर आप नई क्लास में जा रहे हो। स्पेशली अगर हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे, उनको अगर उस कक्षा में ज्यादा भारतीय बच्चे ना हो या उनकी कल्चरल सिमिलैरिटी ना हो बच्चों में, थोड़े चैलेंजेस उन बच्चों को आते हैं जो थोड़े शाय और एंजाइटी प्रोन बच्चे होते हैं। तो ये काफी देखा गया है कि ज्यादा छुट्टी होने के बाद काफी बच्चे स्कूल जाने से ज्यादा घबराते हैं।
3: आज के समय में बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चिंता क्यों बन चुकी है?
4: जाकर के हमने देखा है कि बच्चों का मेंटल हेल्थ इतना काफी चीजें हैं जो इस चीज पे असर करती हैं। जाहिर सी बात है, स्कूल का माहौल, घर का माहौल, और आजकल काफी बच्चे जो हैं, स्पेशली बच्चे जो थोड़े एंजाइटी प्रोन होते हैं, वो काफी मतलब ऑनलाइन गेम्स और वीडियो गेम्स में काफी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन लाया गया है अंडर 16 के लिए, जो अभी हुआ है, उसका असर अभी देखना बाकी है, लेकिन मेरे को लगता है उस पे काफी अच्छा असर पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि वो जो ये बच्चे होते हैं जो काफी टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन गेमिंग पे और ऑनलाइन वीडियो गेम्स, जो कि ये अननोन लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, उससे बहुत आइसोलेशन का डेंजर होता है बच्चों को, और वो बहुत उनका ट्रैप होने का चांसेस होते हैं उनके बच्चों के, कि वो किसी गलत संगत में पड़ जाएंगे। तो उस तरीके से, और ये जब बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं अपने हम उम्र के बच्चों के साथ, उनमें चैलेंजेस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादा देखे जाते हैं, अकेलापन उनका बढ़ जाता है, और वो अकेलापन दूर करने के लिए ये वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन उसमें वो और उलझ जाते हैं, तो उससे वो अकेलापन थोड़े टाइम के लिए दूर होता है, लेकिन वो सोशल स्किल्स उनके डेवलप नहीं होते, और उससे एंजाइटी और डिप्रेशन वाले जो ज्यादातर देखे जाते हैं बच्चों में।
3: और क्या अलग अलग उम्र के बच्चों की मानसिक परेशानियां अलग होती हैं?
4: जाहिर सी बात है, जब बच्चे थोड़े बड़ी उम्र के होते हैं, उनको मतलब उस टाइम पे उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, एंड उनकी इंटरेस्ट और चीजों में और दूसरे सेक्स में ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम वो दूसरे टाइप के इमोशनल चैलेंजेस से गुजरते हैं, तो उनका जो डिप्रेसिव और एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं वो उस डेवलपमेंटल साइकिल से गुजरता है, और वो डिफरेंट तरीके के मतलब डिप्रेसिव सिम्टम्स के थ्रू गुजरते हैं। तो उस टाइम पे बच्चों के ऊपर हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो वो कुछ बच्चे नोटिस में आते हैं कि वो काफी चुप हो गए हैं, शायद कोई अगर किसी से लड़ाई हुई है उस टाइम, उनके गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बन रहे हैं उस टाइम, कुछ लड़ाइयां हो जाएं आपस में, और बच्चे इस उम्र के बच्चे माँ बाप से ज्यादा बात नहीं करते, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आइसोलेट हो जाएंगे। तो उस तरीके में उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल मतलब उनके ऊपर भार होता है, एक प्रेशर होता है, एक सोसाइटी में अपना मतलब अपना स्कूल में नाम बनाने का, पॉपुलर रहने का डिफरेंट प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे उनको डिफरेंट तरीके का मतलब इमोशनल चैलेंजेस उनके डिफरेंट तरीके के आते हैं।
3: क्या आज के बच्चे पहले की तुलना में ज्यादा एक्सपेक्टेशन और कंपटीशन के दबाव में जी रहे हैं?
4: सारे बच्चों का ये है कि एक कल्चरल प्रेशर उनके ऊपर होता है। हमारी फैमिलीज में एजुकेशन को बहुत अच्छा एक दर्जा दिया जाता है कि बच्चों को पढ़ना है और पढ़ के कुछ करना है, वो ये बच्चे छोटेपन से ये प्रेशर इंटरनलाइज करते हैं। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, जरूरी नहीं है कि माँ बाप ये प्रेशर बच्चों पे मतलब एक ये कह के या ओवर्टली ये प्रेशर डाल रहे हो बच्चों पे कि ये बोल के बार बार कि आपको पढ़ना है और ये करना है, बट ये एक माहौल बना होता है आपकी कम्युनिटी का, आपके कल्चर का, और ये बच्चों को एक्सपेक्टेशन ये बच्चे इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि माँ बाप ये बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, बच्चे खुद भी अपने ऊपर ये प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उन्होंने यही सुना है बचपन से। तो कोई अगर माँ बाप बहुत रिलैक्स भी होंगे तो बच्चों को ये फिर भी अपनी तरफ से ये प्रेशर रहता है कि वो अच्छा करें, कॉम्पिटिशन में भाग लें, पढ़ाई में अच्छा करें, और मतलब अव्वल दर्जे से पास हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मतलब वो अपनी वो एक कहते हैं ना, सब तरीके का प्रेशर है, कम्युनिटी का, माँ बाप का, अपने आप का, तो तीनों का प्रेशर उनको उनके ऊपर है कि वो उस पे मतलब खरे उतरे। तो वो जरूरी नहीं है कि सब लोग ये ओवर्टली कह के प्रेशर डाल रहे हैं, ये बच्चे हमारी कम्युनिटी में इंटरनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये अनसेड एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें करना अच्छा करना है।
3: माइग्रेंट या बहु सांस्कृतिक परिवारों के बच्चों को क्या अतिरिक्त मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
4: आई थिंक ये डेफिनेट है क्योंकि आपको एक दूसरी कंट्री से आए हैं, आपने हमेशा से देखा है कि आपके माँ बाप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कुछ यहाँ पे मतलब अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिश किया है, कम्युनिटी में उन्होंने चैलेंजेस देखे हैं और वो इतने चैलेंजेस वो देखे हैं, तो ये घरों में बातें होती हैं, वो बच्चे प्रेशर इंटरनलाइज करते हैं कि उन्होंने भी कुछ आगे करना है क्योंकि वो यहाँ पे उनकी कम्युनिटी में एक माइनॉरिटी है, तो उन्होंने कुछ कर दिखाना है, तो ये माइग्रेंट फैमिलीज पे डेफिनेटली एक प्रेशर वो इंटरनलाइज करते हैं बच्चे। इट इज नॉट ओनली ये हमारी ही फैमिलीज नहीं, सारी माइग्रेंट फैमिलीज का मैं कहूंगी, स्पेशली हमारे बच्चे, क्योंकि ट्यूशन पे ज्यादा जोर होता है, सिलेक्टिव स्कूल में ग्रेड 9 में एग्जाम देने का ज्यादा जोर होता है, आप अगर सिलेक्टिव स्कूल्स में जाएंगे वहाँ पे काफी बच्चे हमारे बैकग्राउंड के आप भारतीय बच्चे बहुत पाएंगे, तो वो इंडियन चाइनीज श्रीलंकन कम्युनिटीज पे आई थिंक ये होता है, एक अनसेड प्रेशर है।
3: तो ये थी मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा चावला से बातचीत। यह इस बातचीत का पहला भाग था। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे कि बच्चों में मानसिक तनाव के ऐसे कौन से संकेत हैं जिसे माँ बाप को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही माँ बाप यह कैसे जान सकते हैं कि कहीं बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार तो नहीं है। कब माँ बाप को यह समझ जाना चाहिए कि अब बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोफेशनल मदद लेना जरूरी है। साथ ही हम जानेंगे कि बच्चों

कुछ जानकारी ले रहे थे बच्चों के व्यवहार की। इसके और भी कई बातें हैं जिसकी चर्चा हम अगले शनिवार के कार्यक्रम में करेंगे। और हाँ, अपनी विशेष स्थिति के लिए हमेशा ही अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य परिषद से सलाह करें। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना सुनते चलें एक गाना।

0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपने महसूस किया होगा कि आज अभी तक आपने कोई विज्ञापन नहीं सुना, तो बस ये जानिए कि आज के कार्यक्रम में कोई भी विज्ञापन नहीं पड़ेगा। और हाँ, आज भी आप फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म के डबल पास जीत सकते हैं। बस आपने हमें बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं। अपना नाम और ईमेल के साथ अपने जवाब भेजिए 04397997667 पर। तो ये तो आपने हमें बताना है, इसके अलावा और भी आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए।
1: What does getting older mean as a woman?
2: The more I live, the more mistakes I make, the wiser I am.
1: And is there a secret sauce to aging well?
3: When you're post-menopause, I learn it

0: from me, take up tango.
1: I'm Yumi Steins, and in season 3 of Scene, I talk to wise, older women. Fierce, tenacious queens who have faced life's challenges and come through with wisdom and purpose in their glorious third act. Scene, season 3, listen now on your podcast app.
2: SBS South Asia.
3: 60 se shuru hua tha. वो न केवल देश के सुंदर परिदृश्य से सम्मोहित थे बल्कि अलग अलग विशेषताओं से युक्त लोगों की जो अद्भुत विविधता थी, रंग बिरंगे परिधान थे और उनके असाधारण व्यवसाय थे, उन सब के वो बहुत ही कायल थे। बहुत से चित्रकारों ने उत्तर भारत के दृश्यों को कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ब्रिटिश जीवन था उसका और वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के जीवन को अपनी चित्रकारी में उतारा। पश्चिमी भारत और मुंबई प्रेसिडेंसी के चित्रों को चित्रित करने का श्रेय जाता है कैप्टन आर.एम. ग्रिंडले को, जिन्होंने 1804 से लेकर 1820 तक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में काम किया। उनकी पुस्तक सीनरी, कॉस्ट्यूम एंड आर्किटेक्चर के दो भाग 1826 और 1830 में प्रकाशित हुए और इन दोनों ही पुस्तकों में इस क्षेत्र से संबंधित आकर्षक चित्र हैं। ब्रिटिश कलाकारों ने पहली बार भारतीय नारी के यथार्थ के भी चित्र प्रस्तुत किए थे। साहित्य में तो महिलाओं के चित्रों का उल्लेख है, लेकिन किसी ने भी प्राचीन भारत में उन्हें संरक्षित नहीं किया। लघु चित्रकारी यानी मिनिएचर पेंटिंग्स में नारी के स्वरूप को चित्रित किया गया और एक आदर्श नारी के उस आकर्षक सौंदर्य और गुणों को चित्रित किया गया जो अभी तक सामने नहीं आए थे। उत्तर भारत में महिलाएं पर्दा करती थीं, तो उन्हें लोगों के नज़रों से अलग रखा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वो घुड़सवारी करती थीं। उन्हें अजनबी लोगों द्वारा देखा भी जाता था और उनकी प्रशंसा भी की गई। तो शायद यही एक कारण रहा होगा कि लॉर्ड वलेशिया ने रामनाट की रानी के साथ हाथ भी मिलाया था 1805 में। उन्होंने नाना फर्नवीस की विधवा जो कि एक मराठा महिला थी उनसे मुलाकात भी की थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का व्यापक दौरा किया था फैनी पार्क्स ने और फैनी पार्क्स मराठा महिलाओं के घुड़सवारी कौशल से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं एशिया में जन्मी होती तो मराठा होती। वो मराठा राजकुमारी बैजाबाई जो दौलतराव सिंधिया की विधवा थी उनकी बहुत ही अच्छी मित्र बन गई थी। कर्नल टीडी ब्रोटन एक कंपनी के संस्थापक थे जिसका विकास बाद में ग्रिंडलेज के बैंकिंग साम्राज्य के रूप में हुआ। तो कर्नल टीडी ब्रोटन ने 1831 में अपनी एक किताब लिखी, लेटर्स रिटन इन ए मराठा कैंप, और इस किताब में अपने पतियों के साथ घोड़े की पीठ पर सवारी करने वाली मराठा महिलाओं के बारे में लिखा और उनके चित्र भी प्रकाशित किए। इसी तरह से सर जॉन मेलकम ने होलकर की पुत्री भीमाबाई की चर्चा की। ब्रिटिश कलाकारों ने महाराष्ट्र की विभिन्न वर्गों की महिलाओं के सम्मोहक चित्र पेश किए हैं। जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले ये चित्र न केवल संवेदनशील हैं, बल्कि बहुत ही आकर्षक हैं। कहा गया है कि यूरोपीय रात्रि परिधानों की तुलना में साड़ी जो है वो बहुत ही गरिमापूर्ण और अधिक आकर्षक परिधान है। तो मुंबई की मछुआरिन बॉम्बे फिशरवुमेन की गरिमा और सौंदर्य का ब्रिटिश चित्रकारों पर विशेष असर पड़ा। 19वीं सदी के अंतिम भाग में भारत के बड़े शहरों में कला विद्यालयों की स्थापना हुई। पहले पश्चिमी कला स्कूल की स्थापना ब्रिटिश रेसिडेंट सर चार्ल्स मालेर ने 1790 के दशक में पुणे में की, लेकिन ये कुछ ही वर्षों में बंद हो गया। सुप्रसिद्ध जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में पारसी जमशेद जी जीजाबाई की सहायता से की गई। जॉन ग्रिफिथ्स ने 1865 में इस स्कूल के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। ये माना जाता है कि वो भारत में रहकर काम करने वाले सबसे महान विक्टोरियाई चित्रकार थे। वे भारतीय प्राचीन कला के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने भारत और उसके लोगों की समृद्धि और सजीव रंगों का चित्रण किया। कामकाजी महिलाओं के, चाहे वो मछुआरिन हो या मजदूर, जो रेखा चित्र उन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही रोमांचकारी छवि पेश करते हैं। जॉन ग्रिफिथ से और उनकी रचनाओं से भारतीय कलाकारों को बहुत प्रेरणा मिली और इनमें शायद प्रमुख हैं एमवी धुरंधर, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे के प्रथम भारतीय निदेशक बने थे। तो इस तरह से अगर ब्रिटिश चित्रकारों ने जो भारत के लिए काम किया, कह सकते हैं कि उनकी पसंदीदा चित्रण की विषय वस्तु रही महाराष्ट्र की साहसी महिलाएं।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कैसे ब्रिटिश कलाकारों की पसंद रही महाराष्ट्र की महिलाएं अपनी चित्रकारी के लिए। अगर आपको भी कुछ इस तरह की जानकारी है जो बिल्कुल अलग से हो, क्यों ना आप हमारे साथ उसे साझा करें और हमें आप उसके बारे में अवश्य बताएं। वैसे यहाँ पर आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहीं कहीं पर होगा, शायद होगा, तो क्या आपको मालूम है कि कहाँ पर है? कुछ अजब सी बात तो लगती है, लेकिन शायद ये कहीं है, और अगर है तो ये कहाँ पर है? आप इसके बारे में सोच के मुझे जवाब भेजिएगा और सुनते हैं ये गाना।

0: श्रोताओं, इस गाने से पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया में कहीं भी, तो हमारे श्रोता निकिता ने तो जवाब लिख भेजा है। कहाँ पर है ये भी आप हमें बताएं, और आप भी सोचें, और ये भी आपको बताती चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में तकनीकी परेशानी के कारण हमें पता चला था कि आज हम आपको कोई भी विज्ञापन नहीं सुनवा सकते, लेकिन अभी अभी हमें बताया गया है कि नहीं, विज्ञापन सुनवाए जा सकते हैं। तो बस पहले उसी तरह से अंतराल लेते हुए, यानी विज्ञापन का एक अंतराल लेते हैं, कार्यक्रम को आगे इसके बाद बढ़ाएंगे।
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
3: We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, संदेश आपके आ रहे हैं और हमारे श्रोता ब्रजेश आज अपने पूरे परिवार के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है पूरे परिवार का। और आपसे जो सवाल भी पूछे हैं उसके बारे में भी बताइएगा। फिल्म का डबल पास आप जीत सकते हैं, उसके लिए भी आपके संदेश आ रहे हैं। अब चूंकि उन सबके नाम बताना संभव नहीं है, आपके जो संदेश हैं वो जो सही जवाब हैं उसको हम ड्रॉ में जाएंगे ही। अभी चलते हैं, कहाँ चले जी? बॉलीवुड की दुनिया में।
5: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं निर्माता डेविड धवन की। मशहूर फिल्म निर्माता डेविड धवन अपनी आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के बाद बतौर निर्देशक संन्यास ले लेंगे। करण जौहर ने कहा कि उनके जाने का एहसास बेहद अजीब है क्योंकि उनसे प्रेरणा लेकर ना जाने कितने फिल्म मेकर्स ने अपनी पहचान बनाई है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म में उनके बेटे वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 5 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 छोड़ने से रणवीर सिंह विवादों में फंस चुके हैं। फरहान अख्तर की शिकायत के बाद फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है। ऐसे में वो डॉन 3 विवाद खत्म होने तक कोई फिल्म नहीं कर सकेंगे। रणवीर सिंह बैन की घोषणा होने के बाद देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। मुंबई में आयोजित एक फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान डायरेक्टर डेविड धवन और वरुण धवन के साथ शामिल हुए। इस इवेंट में सलमान खान ने वरुण धवन की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में उनके आइकॉनिक गाने चुनरी चुनरी को रिक्रिएट करने पर मजाक में उनकी खिंचाई की। सलमान ने वरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने मेरा एक और गाना उठा लिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। हेमा मालिनी ये सम्मान लेने पहुंचे जिस समय वो बेहद भावुक हो गई, जबकि बेटी अहाना फूट फूट कर रोती दिखी। अब हेमा मालिनी ने भावुक पोस्ट कर कहा है कि सम्मान लेते हुए उन्हें धर्मेंद्र की मौजूदगी महसूस हुई, उन्हें ऐसा लगा जैसे धर्मेंद्र ने उनका हाथ थाम लिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के करियर में एक अचीवमेंट जुड़ गई है, उन्हें स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड स्क्रीन राइटर्स डायलॉग राइटर्स को दिया जाता है जो लेखक क्रिएटिव काम के लिए सिनेमा में योगदान देते हुए उनके लिए खासतौर पर यह अवार्ड बना है। अपनी सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए उन्हें स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड मिला। उन्होंने बेस्ट डायलॉग के लिए अवार्ड जीता, साथ ही बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड को राइटर बिलाल जिंदगी और मानव चौहान के साथ साझा किया है। शायद की आगामी फिल्म कॉकटेल 2 का गाना माशुका मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।
6: दिल है तभी मुश्किल है, पड़े अगर तेरे लिए मर भी जाना, उफ नहीं कर दीवाना।
5: बोनी कपूर हाल ही में दिल्ली में एक बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी आगामी फिल्म मॉम 2 के बारे में कहा कि ये फिल्म 2017 की मॉम का सीक्वल है जिसमें दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बोनी कपूर के अनुसार फिल्म का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। बोनी कपूर ने कहा, यहाँ मॉम 2 की शूटिंग चल रही है। इसके डायरेक्टर गिरीश कोहली हैं जिन्होंने मॉम 1 की कहानी लिखी थी। हेरा फेरी 3 की घोषणा के बाद से ही फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन ज्यादातर गलत वजहों से। अब महीनों पहले एक खबर आई थी कि फिल्म के लीड एक्टर्स के बीच सभी मतभेद खत्म हो गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक नई परेशानी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक परेश रावल ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है। रिपोर्ट के अनुसार परेश रावल ने फिल्म की साइनिंग अमाउंट 15% ब्याज और अतिरिक्त मुआवजे के साथ वापस कर दी है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि परेश रावल की कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय हुई थी। टर्म शीट में ये लिखा गया था कि उन्हें बाकी के पैसे 14 करोड़ 89 लाख रुपए फिल्म रिलीज होने के एक महीने बाद दी जाएगी। इस शर्त को लेकर परेश रावल की मंजूरी नहीं थी। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली है, ऐसे में हीरा फेरी 3 2026 की आखिरी या फिर 2027 से पहले रिलीज होने की संभावना काफी कम है। यानी परेश रावल को अपनी बाकी फीस पाने के लिए करीब 2 साल तक इंतजार करना पड़ता। अभिनेता शाहिद, रश्मिका और कृति सेनन स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना तुझको रिलीज कर दिया गया है।

बॉलीवुड स्टार ऋचा चड्ढा और अली फजल जल्द ही न्यूजीलैंड में बॉलीवुड का रंग बिखेरते नजर आएंगे। दोनों 2 जून 2026 को देश के पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ न्यूजीलैंड की आधिकारिक लॉन्च में शामिल होंगे। ये अभिनेता निर्माता जोड़ी इस लॉन्च इवेंट की मुख्य आकर्षण होगी। इस मौके पर उनकी बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म गर्ल विल बी गर्ल्स की खास स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी। इस फिल्म को दुनिया भर के बड़े फिल्म फेस्टिवल जैसे संडांस और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में काफी सराहना मिल चुकी है। हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया और अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया। अब एक बार फिर इस जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल निर्देशक सुरेश त्रिवेदी ने बताया कि आने वाले समय में माधुरी और अनिल कपूर एक बार फिर एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए साल बेहद खास रहा। एक तरफ मैंने अनिल कपूर के साथ सीरीज सूबेदार में काम किया, वहीं दूसरी तरफ अब मैं माधुरी दीक्षित के साथ माँ बहन में काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव है। सुरेश त्रिवेदी ने माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी को लेकर भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मैं दोनों को फिर से एक साथ पर्दे पर लाना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर दोनों को साथ लेकर कुछ नया बनाने की कोशिश करूंगा। अयान अग्निहोत्री ने फिल्म बंदर का गाना कम ऑन बेबी गाया है। ये गाना सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री का पहला हिंदी ट्रैक है जिसे निर्माता निखिल द्विवेदी के कहने पर बनाया गया। फिल्म बंदर 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूँ इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज इंडी हिंट फिल्मों में शामिल हो गई है। सिर्फ 1.5 करोड़ के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 14 दिनों के अंदर 4.15 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अच्छी कहानी और दमदार एक्टिंग आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच सकती है। सबसे खास बात यह है कि मैं एक्टर नहीं हूं ने बिना किसी बड़े कमर्शियल सपोर्ट या फ्रेंचाइजी के ये सफलता हासिल की है। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अंजलि भूषण मागो जल्द ही अपनी पहली फिल्म पर काम शुरू कर देंगी। इश्का नाम से बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो साइप्रस में शूट होगी। साइप्रस के राष्ट्रपति ने फिल्म इश्का की शूटिंग पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, साइप्रस में पहली बॉलीवुड फिल्म शूट होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे और भी कई सहयोगों की शुरुआत होगी। पंजाबी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री और गायिका शहनाज गिल ने एक खास वीडियो पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में शहनाज सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सॉन्ग शीशा पर डांस कर रही हैं, जिसे दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही। बाय बाय।

0: तो श्रोताओं, आप ये गाना सुन रहे थे और इससे पहले एक गाना और बजाया था जो बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में था और वो था हमारी श्रोता रमा भारद्वाज की पसंद का। उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। ये गाना भी उसी कलाकार पर फिल्माया हुआ है। क्या आपको इस कलाकार का नाम याद है? आप इसके बारे में सोचिए। और मैंने आपसे सवाल भी पूछा है कि विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसके बारे में भी सोचिए, मुझे जवाब लिख भेजिए और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
1: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
2: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
4: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
5: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपके संदेश तो आ रहे हैं। आपसे सवाल पूछा था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अनिल भोज जी ने भी सही जवाब लिख भेजा है, रमा भारद्वाज जी ने भी जवाब लिख भेजा है और कुमार जी का भी संदेश है। फिलहाल इसके बारे में ये बता सकती हूँ कि ये एक झील का हिस्सा है। क्या नाम है, कहाँ पर है, इसका जवाब मैं बताती हूँ आपको इस गाने के बाद में।

और श्रोताओं बताती चलूं कि कुमार जी हमारे श्रोता, उन्होंने बिल्कुल सही बताया, जो गाना सुनवाया था इससे पहले उसके कलाकार थे देवानंद जी और गायक तो रफ़ी साहब थे ही। वैसे ये आपको बता दूं कि इस गाने ने कुमार जी की कुछ यादें भी ताज़ा कर दी। और आपसे पूछा था एक सवाल कि विश्व का फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है भारत मणिपुर में। इसका नाम है कीबुल नामजो नेशनल पार्क, जो हिस्सा है लोकतल झील का। और यहाँ मिलते हैं संगई हिरन, जो कि एक बहुत ही कह तो लुप्त प्राय तो नहीं है, लेकिन हाँ उस कगार पे खड़े हुए हिरन हैं। और अब समय हुआ है कार्यक्रम के आखिरी गाने का।

से अब मैं इजाज़त ले रही हूँ। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते किसी भी कार्यक्रम में तो होगी ही, बस आप हमारे साथ कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए। तो इस गाने को सुनते रहिए और अनीता बरार का नमस्कार।

0: Only party tune. Desi dance party on SBS South Asia.
1: आज मंगलयान को इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मंगल पर स्थापित कर दिया.
2: तोता उड़, मैना उड़, उड़ जैसे रॉकेट उड़.

0: SBS South Asian.
1: Check.

ใจเปิดดู Dancing Foreign Style Slow down boys

कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल है।

उसके इशारों पे मैं चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक्समी को फिर से नरम।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छिपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: राजा बजाना।

हस्ती यार जैसी होशियारी फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह।

Yo-Yo Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

मिला सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं हुआ, एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

0: खुमोस आवर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: SBS साउथ एशियन।
2: म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

0: decision.
1: Watch on SBS On Demand.

0: SBS South Asian.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

Saudision. Yo!

a la garda उड़ा दी है। अरे गर्दा उड़ा दी है।